0: हालांकि आप अपनी शैली को स्टोरी टेलिंग नहीं बोल रहे हैं, रेसिटेशन नहीं बोल रहे हैं, बट ये भी स्टोरी टेलिंग है. वास्तव में देखा जाए तो सभी शैलियां स्टोरी टेलिंग ही है. अब डच मास्टर्स देख लो, मेरे दो चार नाम मैं गिना सकता हूँ, मेरी नॉलेज उतनी उतनी है. जब मैं बड़ा हो रहा था, मुझे बी प्रभा एक पेंटर होती थी, अब पता नहीं आपका कितना नाम सुना है, तो उनकी पेंटिंग्स कैलेंडर्स पे बहुत आती थी, कंपनीज के कैलेंडर्स पे, तो मैं बड़ा फैन होता था उसका. तो कैलेंडर काट के मेरे हॉस्टल के कमरे में लगते थे. तो आपने मॉडर्न मीडियम्स में भी काम किया है जी जी, तो मैं देख रहा था कोई स्क्रीन पैनल हो गया, तो वो बताइए कि जब आप इन चीजों को देखते हैं, हम आम आदमी नहीं सोचता कि उनमें आर्टिस्टिक एग्जिस्टेंस भी है, अस्तित्व भी है उनका. उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे फैलता है.
1: जैसे मेरा एक काम है रिंगा रिंगा ऑफ रोजेज ऑफ 21st सेंचुरी. आप अगर देखोगे तो वहाँ पे क्या है ना कि आप जब एग्जीबिशन हॉल में घुस रहे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक वॉशिंग मशीन है एंड वॉशिंग मशीन में कुछ चल रहा है. एंड देन आप जब सामने जाएंगे, आप देखेंगे उसके अंदर, जैसे वॉशिंग मशीन जब चलता है, जैसे वो होता है घूमता है, तो वहाँ पे एक ब्रेन घूम रहा है, एक नर्व घूम रहा है, एंड वो आहिस्ता आहिस्ता टूटते जा रहा है. तो बेसिकली ये रिंगा रिंगा रोजेस बच्चे का स्टोरी नहीं है, ये बहुत डीप वर्क था. आप कॉन्सेप्चुअल वर्क में मिल जाएगा ये. तो उसमें इसीलिए क्योंकि वो इसीलिए वैसा है कि जैसे हम लोग कोई कपड़ा धोते हैं वॉशिंग मशीन में, हम लोगों को लगता है कि वाओ इट्स न्यू, बट वो आहिस्ता आहिस्ता उसका लॉन्गजीविटी, उसका आयु कम हो जाता है. हम लोग भी यही कर रहे हैं, हम लोगों का जितना ब्रेन यूज कर रहे हैं, जितना उसको साफ कर रहे हैं, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसका आयु खत्म हो जाता है, उसका पावर खत्म हो जाता है. तो इसलिए मैंने ऐसे करके दिखाया था. हाँ, और एक काम है जैसे पैंडोरास बॉक्स. पैंडोरास बॉक्स में आप जब
0: मैंने देखा था आने से पहले, मुझे पूरी तरह समझने में दिक्कत हुई मुझे इसको. बताइए जरा.
1: मेरा काम में ना, आप वेबसाइट में देखना थोड़ा वो है, मुश्किल होता है, आपको वहाँ पे जाना होगा. वहाँ पे जाके जो फील होता है ना, जैसे ऑडियो होता है, वीडियो होता है, वो एटमॉस्फेयर होता है,
0: वो देख के जो आया मुझे पूरा तरह से रियलाइज.
1: वो जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक वेबसाइट में उतना नहीं होता है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है, क्योंकि सब लोग तो नहीं जा सकते. तो इसमें जो है ये काम मैंने 2012 एंड में किए थे. यहाँ पे एक जन का लाइफ है जो अमेज़न में काम करता है. ये अमेज़न का वर्क कल्चर के बारे में था, ऑल्दो वहाँ पे अमेज़न को मैंने अमेजिंग कर दिया है. तो जैसे हम लोग जो एक बॉक्स ऑर्डर करते हैं, अभी तो नॉर्मल हो गया है, बट उस टाइम बहुत हाइप था. हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, वो घर आ जा रहा है. वो बॉक्स का स्टोरी क्या है? वो बॉक्स के पीछे जो वर्कर्स है उन लोगों का स्टोरी क्या है? वो लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं? वो जब बॉक्स खोलोगे उसका हाथ का दर्द, उसका पैर का दर्द आपको दिखेगा विथ लॉट ऑफ स्टोरी. डायलॉग था कि दो वर्कर बात कर रहे. सो ये है एक इसके पीछे का स्टोरी.
0: तो ये तो एक ऐसी बात हो गई कि जो आपने एक ऐसी कॉन्टेक्स्ट देखी, आप किसी भी तरह से सीमित या लिमिटेड नहीं कि आप उसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे. उस चीज को बताने के लिए अगर नए ग्रामर, नई मेथड आपको ढूंढनी पड़ेगी, आप ले आएंगे, ये बहुत ही दाद देने वाली बात.
1: एंड इसके लिए मैंने वहां पे एक पैन वर्कर एज ए वर्कर काम किया टू नो दिस.
0: अच्छा, हाँ, खुद के
1: समझने के लिए सो दैट अगर आप खुद नहीं समझेंगे तो वो आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे.
0: मेरी इसमें भी उत्सुकता हो रही थी कि

0: प्रोपेगंडा डिस्प्ले जो हिटलर के वक्त का कैप्चर किया है, ये भी एक डॉक्यूमेंट्री स्लैश कॉन्सेप्चुअल कैटेगरी आ जाती है. तो जर्मनी में आपने टाइम बिताया है, तो उस दौरान किया होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा बताइए उस बारे में.
1: तब हम लोग थिंगस्टेटन, मतलब ये जो स्टेज होता है, होता था उस टाइम, उन लोग जर्मन में थिंगस्टेटन बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग काम कर रहे थे. वो क्या था ना कि वहाँ पे प्रोपेगंडा चालू करते थे वहाँ से, लाइक सम आज के डेट में तो ये सब माइक फाइक ये सब हो जाता है एंड वो लोग बोलते हैं. उस टाइम बहुत, मतलब हिटलर वाज रियली रियली एडवांस दिस टाइम. उसने बहुत लॉजिकली, बहुत सोच के ये डिज़ाइन किए थे कैसे हो सकता है. मैंने बहुत रिसर्च किया एंड उसके बाद इसको मैंने एक इमेजिनरी एंगल दिए कि मान लीजिए कि आपको उसका वो पेपर्स, एक फाइल मिल गया है, वो फाइल कैसा दिखेगा, वो कैसे लोगों को किया होगा, लोगों को कन्विंस किया होगा, वो मैंने किया.
0: आपने इमेजिनरी फाइल क्रिएट की.
1: हाँ,
0: उस स्कीम को समझाने के लिए.
1: हाँ,
0: क्या बात है, क्या बात है.
1: बट इसके लिए भी मैंने बहुत सारा ये थिंगस्टेटन में गए, उन लोगों का म्यूजियम में गए एंड देन उस टाइम का ड्राइंग कैसे हो सकता था उस, तो मैंने ऐसे किए, उस टाइम का फोटोग्राफी कैसा हो सकता है.
0: ये तो कल्पना को भी एक अलग लेवल पे ले जाने की बात है. कल्पना से एक नई दुनिया क्रिएट करने वाली बात हो जाती है कि उस कल्पना से आप उस दुनिया तक पहुंचा हमको. हाँ, लेकर गए.
1: मैं आपको उस जमाने में लेके जा रहा हूँ.
0: बट उस तरह से जैसा कि हम समझ सकते हैं कि भाई. हाँ, फाइल देख करके.
1: हाँ,
0: बहुत खूबसूरत.
1: मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में ये कनेक्ट हो ऑडियंस के साथ. मेरा काम देख के ऐसा ना लगे कि क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया. मुझे, मैं ऑलवेज सोचता हूँ कि जो लोग है देखने आ रहे उसको समझ में आ जाए.
0: कोई ऐसा ले, ये कल्पवृक्ष, वृक्ष थोड़ा सा सुंदरता और स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी सी बात कर लें डार्क डार्क टॉपिक्स के साथ साथ.
1: ये मेरा पहला काम है ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद. ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद दो चीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड किया है. एक है यहाँ का नेचर. मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में आके कोई अगर नेचर के साथ खुद को कनेक्ट नहीं करता है तो उसको ऑस्ट्रेलिया आके कोई फायदा नहीं है. एंड दूसरा है एबोरिजिनल आर्ट. ये दोनों ही चीज अनोखा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो शायद पूरा दुनिया में शायद जंगल आपको मिल जाएगा बट ऐसा नेचर आपको नहीं मिलेगा
0: क्योंकि उसमें कनेक्शन है उनका. हाँ, सदियों पुराना, क्या उससे भी पुराना कनेक्शन. हाँ, है.
1: और एबोरिजिनल लोगों का काम,
0: उसकी बारीकी,
1: उसकी बारीकी, उन लोगों का फीलिंग. तो वो दोनों बहुत ज्यादा मुझे प्रभावित किया है. ये काम मैंने किया था. मैंने एक सुई धागा से ऊल एंड फैब्रिक के ऊपर एक नॉर्मल ट्री बनाया था. उसके बाद मैंने लोगों को, जो ऑडियंस है, उसको मैंने बोला था कि आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, आप इससे रिमूव भी कर सकते हो.
0: अच्छा.
1: टू नो के इंसान करते क्या है, आप नेचर को रखना चाहते हो या नेचर को बिगाड़ना चाहते हो. इट वॉज ए वन टाइप ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंट. मुझे बहुत मजा भी आया था कि जब ऑडियंस
0: इंटरेक्टिव हो गया.
1: इंटरेक्टिव जब लोग ऑडियंस है, मतलब 10 लोग एक साथ जाते हैं, सब लोग उसमें ऐड करते हैं. बट मैंने देखा है जब कोई नहीं है, कोई उससे धागा मूव भी, मतलब रिमूव भी किया है. सो ये एक दिस टाइप ऑफ वर्क था कि नेचर आपको, आप नेचर को पसंद करते हो या नहीं करते हो. बेसिकली कल्पवृक्ष इज दैट वृक्ष, जो स्टोरी है कि उसके नीचे आप बैठे जो मांगोगे आपको वही मिलेगा. नेचर वही चीज है जिसको जिससे आप जो मांगोगे आपको वो ही मिलेगा। आप अगर नेचर को ठीक ठाक से रखोगे वो आपको अमृत देगा, अगर आप नहीं रखोगे आपके लिए विष ही विष है।
0: दोनों अशांत, नेचर भी अशांत होगी और आप भी अशांत होगी।
1: हाँ, तो ये था इसीलिए कल्पवृक्ष।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आइए थोड़ा प्रियंका जी से बात करते हैं। तो प्रियंका जी, एक छोटा सा गाने का क्लिप डाल देते हैं
2: जरूर,
0: ताकि हमारा दिमाग रेडी हो जाए आपके लिए पूरी तरह से।

0: truly able to change.
1: ऐसा है, ऐसा तो नहीं होने वाला है. चलिए अभी अपनी बात ही शुरू करते हैं. तो हमारी बात हो रही थी रेसिटेशन आपकी टेक्निक है और आप बता रहे थे कि कैसे सदियों से ये तरीका है कि एक पिक्चर किसी भी तरह की लेकर के, भले ही वो हाथ में पकड़ी हो, भले स्टेज पे बनी हो या कलाकार ने खुद अपने कपड़े उस ढंग के, पोशाक उस ढंग की डाली हो, तो उसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट करके बताइए और एग्जांपल्स बताइए कुछ खास.
2: जरूर. सो ये बहुत मतलब ऑलमोस्ट सेकंड सेंचुरी बीसी, मतलब 200 ईस्वी वहाँ से वो मिलती है आपके बाना भट्ट के कुछ प्लेज में मिलती हैं कि उस समय राजा के जो वो स्पाइज होते थे वो जगह जगह घूम घूम कर इंफॉर्मेशन बटोरते थे और उसके लिए वो या तो सर्कस के लोगों की तरह या वो ऐसे चित्र दिखा दिखा के कहानियां बोलते थे और अपना टाइम टू टाइम वो खबर भी इकट्ठा करते थे और फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. और फिर जब बुद्धिज्म इंडिया से श्रीलंका, जावा, इंडोनेशिया गया तब ये शैली वहाँ पर भी गई. तो आज जो आप इंडोनेशिया में देखते हैं कि उनका एक वो है शैडो पपेट्री है, वो भी इंडियन इसी स्टोरी टेलिंग जिसमें आप चित्र और कहानी दोनों को एक साथ आप एक चित्र दिखा के कहानी बोलते हैं. यही चीज़ फिर बुद्धिज्म के साथ चाइना और जापान भी गई. आज भी जापानीज मंदिरों में बहुत सारी लंबी लंबी स्क्रोल पेंटिंग्स हैं जो रोल करके रखी जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे रोल खोल के वो दिखाई जाती हैं बुद्ध की कहानियाँ. तो ये शैली भी फिर चाइना जापान इतने दूर तक गई. तो इसका लेकिन जन्म एक स्कॉलर हैं विक्टर मायर करके यूएस के, उन्होंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो बताते हैं कि इस आर्ट फॉर्म का जन्म इंडिया में हुआ और ये इंडिया में पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से दिखते थे. तो जैसे कि वेस्ट बंगाल जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर पटचित्र के नाम से जाना जाता है. वो कागज को कपड़ों पे चिपका चिपका के उसके रोल बनाए जाते हैं और उसमें फिर वो अलग अलग स्टोरीज ऐसे वो अपने नेचुरल कलर्स से वो पेंट करते हैं. राजस्थान में इसे फड़ और कावड़ के नाम से जाना जाता है. फड़ एक बहुत लंबा ऑलमोस्ट 8 से 10 मीटर लंबा कपड़ा है जिसके ऊपर वहाँ के कुछ लोकल देवी देवताओं की स्टोरीज, तो जैसे कि पाबूजी करके एक देवता है उनके राजस्थान में, उनकी कहानी की उनकी शादी हुई, वो किसी से युद्ध करने गए, वो वगैरह वगैरह. और इसकी पूरी इसका जो ये जो गाथा है ये पूरी रात भर चलती है और दिन सुबह सूर्योदय से पहले ख़त्म होती है. लेकिन ये इंटरैक्टिव भी है क्योंकि जो ऑडियंस है वो बहुत बार डिमांड करती है कि नहीं पहले शादी की कहानी सुनाओ, जबकि उनकी लाइफ में शादी शायद बाद में आई हो, पहले कोई युद्ध आया हो,
1: तो रुचि उसमें आती है.
2: लेकिन वो उतनी लंबी गाथा को भी जो गाते हैं वो उनको भोपा और भोपी बोले जाते हैं, वो चेंज कर पाते हैं. वो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो गाने का सीक्वेंस चेंज करके वो वैसे कहानी पूरा सुना देते हैं. साउथ इंडिया में ऐसी शैडो पपेट्री है कि वो लेदर से वो थोलू बोम लता बोलते हैं उसे, वो लेदर से वो हाथ की पपेट्स बनाते हैं, वो जो डंडी से हिलाते हैं एक स्क्रीन के पीछे वो शैडो पपेट्री के. और मैक्सिमम ये सारे पहले रामायण महाभारत की कहानियाँ या विष्णु पुराण की कहानियाँ बताते थे. जब हमारे देश में ब्रिटिश आए, उसके साथ बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स आए, उन लोगों के लिए ये सारी ग्रामीण कलाएं थी, क्योंकि ये सारे लोग ग्राम से एक गांव से दूसरे गांव में जा जाकर ये कहानियां सुनाते थे और कुछ चंदा कुछ दक्षिणा उनको मिलती थी. तो इन सब को उन लोगों ने फोक आर्ट के नाम से इसके बारे में लिखा. बट बहुत देशों में देखा गया है कि जब आप फोक आर्ट किसी चीज को एक टैग एक नाम दे देते हैं तो फिर वो उसका दर्जा नीचा हो जाता है. वो आज के जो कंटेम्पररी आर्ट जिसे हम मॉडर्न आर्ट समझते हैं उससे वो नीची मानी जाती है और फिर धीरे धीरे वो लुप्त हो जाती है, उसको वो सपोर्ट नहीं मिलता है. आज भी कुछ गाँव में राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में कुछ गांव में वो परंपरा परिवार में पीढ़ी बतर पीढ़ी चली आ रही है. बट ये गांव के लोग हैं तो बहुत कम पैसों में जिंदा रहते हैं, इनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है और फिर धीरे धीरे ये कला लुप्त हो जाती है. सो मैंने इसी पे पीएचडी करी कि ये
1: वही बात उठाने वाला था. मैं अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रियंका जी ने इस विषय पर पीएचडी की है. तो खाली भारतीय नहीं, संसार के कई भागों में जो ये कला की परंपरा रही है. तो मेरे दिमाग में दो तीन और सवाल आ रहे हैं जब आपने ये बताया कि एक तो ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि किसी भी चीज को अगर फोक का टैग लगा दो वो आम आदमी का या लोअर लेवल का माना जाता है, वो फाइन आर्ट नहीं कहा जाता. ये शास्त्रीय संगीत में भी है और जो लोकगीत होते हैं उनको माना जाता है कि भाई ये तो आम आदमी के गीत हैं. उसमें अगर आप उसको जस्टिफाई करना चाहें तो जो शास्त्रीय संगीत की प्योर आलाप हैं, जो प्योर गाने की कला है, वो बारीकी लोक गीत में नहीं होगी. वैसे ही लोग वही टेक्निक लोक कला में भी शायद नहीं होगी. लेकिन जो कहानी है कई बारी वो फाइन आर्ट में उतनी नहीं है क्योंकि उसमें टेक्निक पे ज्यादा एम्फेसिस है. उसमें जो फोक आर्ट है और जो फोक के पास है उसमें कहानी और ये भी कह सकते हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी भी एक अलग ही लेवल पे है. क्योंकि कहानी से ही तो रिश्ता बनता है. अद्वैत का रिश्ता कहानी से बनता है कि भाई मैं और तुम एक ही हैं. वो अद्वैत का रिश्ता है, वो कहानी जोड़ती है. जबकि हम कहते हैं कि अरे क्या सुंदर गाया, अरे ये किया, टेक्निक बहुत अच्छी थी, वो भाव भी उतर के आ गया, लेकिन कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ. वो कनेक्शन बहुत बारी नहीं हो पाता फाइन आर्ट में. जो लोक कला होती है, जो
2: लोक कला मेरे लिए बहुत बार ज्यादा रस से भरी होती है. तो हमारे जैसे देश में नाट्य शास्त्र है जिसमें रस रसानुभूति के बारे में बात करी गई है और ये ऑलमोस्ट जैसे हम खाना खाते हैं और इतने तरह तरह के रस होते हैं, मीठा कड़वा तीखा झाल. तो कला का भी यही एक उद्देश्य माना जाता है कि रस की अनुभूति करवाना. जो जो सुन रहा है, जो श्रोता है, जो देख रहा है, ऑडियंस जो है, उसे जो आर्टिस्ट ने फील किया, जो लेखक ने लिखा, वो रस आर्टिस्ट से ऑडियंस तक जाए, वो कहीं बीच में खो ना जाए.
1: बल्कि लोक कला में मुख्य प्रेरणा ही रस की रहती है और कहानी की रहती है. उनके लिए जो टेक्निक है वो उतनी काफी है जितना उनके लिए वो कहानी और रस के लिए चाहिए. उससे ज्यादा उनको कुछ भी नहीं चाहिए उसमें. तो ये बहुत खूबसूरत बात आप दोनों ने बताई. इसी बात पे एक क्वेश्चन मेरे को ये आ रहा है, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अब जो लोग भी ये बना रहे हैं इस तरह की यू नो रेसिटेशन, हिंदी में इनके लोकल नाम भी होंगे, तो ये बना रहे हैं, उस समय के माध्यम वो रहे होंगे, भाई चमड़ा हो गया या कपड़ा हो गया या पेड़ का यू नो स्किन हो गई या अगर हम देखें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में तो क्या सेल्फियां और ये और इस तरह की चीजें, टेक्नोलॉजी हर जगह है. तो मैं بہت ٹیکنالوجی دیکھتا ہوں میں خود اس فیلڈ میں ہوں اس ٹائپ, اور آج کل کون بچا ہوا ہے ان چیزوں سے. اس میں کچھ کونے ہیں جہاں پہ اچھی کہانیاں بتائی جا رہی ہیں, 5% سے بھی کم ہوئیں گی بھلے ہی وہ. تو آپ کے وچار میں یہ جو کہانی بتانے کی کلا ہے, یہ سمے کے ساتھ بدل کے آج کے یوگ میں کیسے پرکٹ ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے, یا پرانے سمبل ہی اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ انہیں کو مینٹین کیا جائے؟
2: سمے کے ساتھ کہانیاں تو قدم سے قدم ملا کے چلتی ہی ہیں. کہانی بولنے کا روپ یا جو کچھ سمبلز ہوتے ہیں, مطلب کہ شاید پنچ تنتر میں وہ شیر جنگل کا راجا تھا, پھر امر چتر کتھا میں ہم نے ایکچوئل میں دیوی دیوتا یا راجاؤں کی کہانیاں دیکھی, کامکس کے روپ میں دیکھی ہیں. آج سنیما ایک بہت بڑا کہانی کا مادھیم ہے. سار بہت بار ایک جیسا ہی رہ جاتا ہے, یا تو ہم شرنگار کے بارے میں بات کرتے ہیں یا ہم پاور کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو وہ کہانی کا وہ پیکیجنگ وہ روپ چینج ہوتا ہے. لیکن یہ کوشش جاری رہنی چاہیے کہ ہم کہانی بولے, اپنے سمے کی کہانیاں بول کے جائیں, ہم اپنے سمے کی ایک چھاپ کہانیوں کے اندر چھوڑ کے جائیں. تو آج تو اسی لیے مطلب کہ ایک کلاکار وہ صرف کیول اپنے پریزنٹ سمے کا ہوتا ہے, اس کے پاس اپنا خود کا یہ پریزنٹ سمے ہی ہے جس کے ساتھ وہ کنیکٹ کر سکتا ہے. وہ دیکھ سکتا ہے کہ پاسٹ میں بھی ایسے سملر کچھ کام ہوئے ہیں, لوگوں نے کہانیاں بولی ہیں, شاید فیوچر میں بھی وہ بولتے رہیں گے, لیکن وہ صرف کیول اپنے اس پریزنٹ سمے کو ہی وہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے بارے میں وہ کہانیاں لکھ سکتا ہے.
1: ہمیں سمجھ میں آیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہ جو فائن آرٹس کے جو پریکٹیشنر ہوں گے وہ ودوان ہوں گے, انہوں نے اتہاس بھی پڑھا ہوگا دوسرے سنسار میں کیا ہوتا ہے, لیکن جو ایک لوک کلاکار ہوگا اس کا دائرہ اور اس کا ادیش بھی جس پریزنٹ جتنا ہی ہے, اس کو ابھی جو رس آ رہا ہے اس نے ابھی جو کہانی بتانی ہے اس کا اس سے زیادہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر اس نے کوئی کہانی سنی ہوگی, کوئی کانٹیکس اس کو پتا ہوگا, تو وہ اس کے بارے میں اس کو اس سے جوڑے گا اس چیز کو. تو بہت بڑھیا. ایک اسی پہ ایک فالو اپ کوشچن یہ تھا کہ لوک کلا عام آدمی, ٹھیک ہے, اس میں فرق ہے, ایک کلاکار کہانی بتائے اور ایک عام آدمی کہانی بتائے, اس کو آپ آج کے پرستھتی میں کیسے بنے؟ کیونکہ آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ کلاکار ایک اسپیشلٹی بن گئی ہے, ایک عام آدمی کلاکار نہیں رہ گیا.
2: تھوڑا سا اس پہ ڈبیٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ آج ٹیکنالوجی نے سب کو کلاکار بنا دیا ہے, سب کو کہانی کار بنا دیا ہے, اور سب کو عام جنتا بھی بنا دیا ہے. کیونکہ ہم ایک دوسرے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک جن ویڈیو بنا رہا ہے اور باقی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اسی طرح تو اور ہم سب اپنا جو دائرہ ہے, کسی کے لیے وہ ایک کچن ہے, کسی کے لیے وہ صرف اپنی کھیت میں جو اگ رہا ہے وہ ہے, کسی کے لیے وہ ورلڈ پولیٹکس ہے. تو ہم سب مطلب کہانی بولنا, کہانی شیئر کرنا مطلب کہ ایک بہت ہی سماجک نیسیسٹی ہے جو ہم سماجک پرانیوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ آج ٹیکنالوجی نے ہم سب کو تھوڑا کہیں ایکول وہ کر دیا ہے کہ ہم کانسٹنٹلی ایک دوسرے کی کہانیاں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, خود کی کہانیاں بول رہے ہیں.
1: تو آپ نے کا کوئی کارکرم ہو رہا ہے, کوئی ایگزیبیشن ہو رہی ہے, تھوڑا بتائیے.
2: فی الحال نہیں, میں تھوڑا دھیرے کام کرتی ہوں, تو کوئی ایک نئی جگہ پہ آنا, میرا کام بہت زیادہ آٹو بایوگرافیکل ہے, وہ مطلب میں کسی ایک نئے دیش میں جا کر कैसा महसूस करती हूँ, उसका समय, उसका इकोनॉमिक्स, उसका पॉलिटिक्स कैसा है. मुझे एक बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक पंचमेल खिचड़ी बनाने की मेरी कला में वो मिलती है. तो अभी फ़िलहाल जैसे साइंस में बैक्टीरिया को लेके बहुत रिसर्च हो रहा है. कोविड के बाद से हमें समझ आया है कि हमसे भी बहुत छोटे अदृश्य प्राणी हैं जो हम पे हावी हो सकते हैं. तो अभी बहुत सारा रिसर्च ऐसा आ रहा है कि हर किसी ना किसी रोग के पीछे शरीर के किसी बैक्टीरिया का हाथ हो सकता है या हाथ है, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स वगैरह वगैरह. तो वो इस लेवल पे जा चुका है कि शायद हम इंसान जितने नहीं हैं उससे ज्यादा हम कहीं कहीं गुण ज्यादा बैक्टीरिया है. हमारे स्किन में बैक्टीरिया है, हमारे पेट में बैक्टीरिया है. तो ये जो साइंटिफिक फैक्ट है मेरे लिए ये कहीं ना कहीं अब मैं पास्ट में जाके जब रिसर्च करती हूँ तो मैं उसको फिर भक्ति पोएट्री के साथ जोड़ती हूँ कि एक समय था जब लोग भक्ति जो हरिजन समाज के लोग जो मंदिर नहीं जा सकते थे वो गा के भक्ति गीत गा के वो अपने ईश्वर को अपने दुख अपनी पीड़ा बताते थे. तो आज ये हो गया है कि बैक्टीरिया हमारे भगवान हो गए हैं, हो सकते हैं. तो आज की जो पीड़ा है, आज जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को लेके बात करते हैं.
1: मैं आपकी कोई चीज देख रहा था ऑनलाइन, सॉरी मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ.
2: नहीं नहीं बोलिए.
1: उसमें आपने कोई बात की है कि कोई शरीर का एक अंग है वो रेड ब्लड सेल में जाकर के धीरे धीरे बाहर आता है, कुछ ऐसा था. तो ये अपने शरीर के अंदर झांक करके उससे ऑलमोस्ट रिश्ता जोड़ करके उससे ऑलमोस्ट बात करके एक कहानी बना पाना, उसके बारे में कुछ अंदाज बताइए.
2: तो एक आई थिंक ये अथर्व वेद में है, किसी एक वेद में है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे. जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, जो हमारे शरीर में है वो ब्रह्मांड में है. तो आज जैसे कि हम ये बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, कोई अंदर घुस नहीं सकता है, उसी तरीके से हमारे ब्रेन में एक बैरियर है, वैसा ही एक टाइट सिक्योरिटी है कि कोई भी जर्म्स बहुत सारी चीजें घुस नहीं सकती हैं क्योंकि ब्रेन इज लाइक अ वेरी हाई सिक्योरिटी एरिया. तो हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आम दुनिया में हम रोज, इवन डॉक्टर जब आपको कुछ समझाता है तो वो आम भाषा में बहुत कुछ बाकी बाहर की दुनिया से जोड़ के आपको समझाने की कोशिश करता है. तो यही अंदर और बाहर जो जिसे हम माइक्रो एंड मैक्रो बोलते हैं, इसको समझना और इसके बारे में कहानियां बनाना ताकि वो लोग रिलेट कर पाते हैं. क्योंकि हमारे अंदर जो हो रहा है, जो दुख पीड़ा तकलीफ हमारे अंदर है वही बाहर है.
1: तो ऐसा है, घड़ी की सुइयां अब हमको बहुत देर से इशारे कर रही हैं कि बातें बहुत बढ़िया हो रही हैं, वक्त कम है. तो ये जो आपसे बात करने का मौका मिला है ये बहुत ही अनमोल मौका है और आपसे और लंबी चौड़ी बातें करें ऐसी हमारी उम्मीद है, एक से नहीं दोनों से. एक ही, अगर आप में से एक भी होता तब भी एक घंटा काफी था, और आप दो हैं तो ट्रेलर जस्ट सैंपलर जिसे कहते हैं ना, बस उतना हो पाया. और विधि का विधान देखिए, आपके लिए आज गीत भी सब चलने के हैं. तो अब बात करते हैं चलने की, अपने श्रोताओं को कह देते हैं कि आज के लिए अलविदा, और अभी 40 सेकंड बाकी हैं हमारे टाइम के, तो हमें जोर से भागना है, चलना नहीं भागना है. तो वो टॉपिक है अभिजीत जी के नए पेंटिंग प्रोजेक्ट का, मुझे ये सीक्रेट पता चल चुका है कि वो रनिंग पे बना रहे हैं, लेकिन अभी हम रनिंग करने वाले हैं. अगले सप्ताह इसी समय 92.3 FM पर गीतांजलि.
2: थैंक यू, धन्यवाद.
3: थैंक यू.